सच तेरा हर सहकारिया, मालिक तू रहना तू हर व्यू अमरा तू विचारिया, गुरदिता तमन सकारिया, गुरदिता तमन सकारिया, राज जो तख्त फेर गुरु रामदास, प्रित में नाहित चंद जगत पर अनंद, तारे नाम मत जन की योग दास, वे अद्भुत दियो नेता अकत कथा दिया, पंचभूत बस किने जनत निवास, फिर अमर गुरु श्री सत कर जुरा पद अगर देखत दत्त चरण कमल जास, सब विद मान्य मन तब ही पर प्रसाद।